दुनिया दिर उलुमकी खुड़ीवर खम गैयाय मजल खम गा मेन वीन वे थकवा विरवा मीहुन्ना आखरत के गोति हेकम मा बुढ़े फह तेबा मीहुन्ना का नुविस्नेह ये।

0: ए कोड़को फाते जेला मा आहार में यहाँ कैरी करती मैं मिहा उन दुगो आने ये ना जा पिन नंबर नो फ्रेंड हिसाब एक अंतिम आनी
1: आ को बा मिता हूँ ना डस्टबिन एहरी तो मैं वैसे डस्टबिन खानो लाम आनी
2: Kadang-kadang menderungam berat, kadang-kadang tidak semnet. Mee dino ke aduk.

ए नरक अन्न रुणिंग कुदि कुदि वेदां कैरी वेदे काफिरुंगे फौजे ए नरकया एल्लवा कुम्मे फहरको एतांगे बंडेरिंग एवरेन्ना सुवालु कुरव्वानेते इंजारु कुरव्वा रसूलकु त्यबै मीहुंगे गाता वडे नुगन्नवा हिये।